0: officially London's number one Asian commercial radio group.
1: Classic Nahumi, आपके अपने लाइका गोल्ड पर.
2: तक तक तक

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: ना तो आज बरसात का मौसम, ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
2: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही,

लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

गावन पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे 68 तीर्थ।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

0: Japan tour now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
3: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
4: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इल्फर्ड IG6 3SL
3: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
4: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
3: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज? चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए. आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक. खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.

0: Falcon. Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
2: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
1: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
2: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
1: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
3: हर हर महादेव।
4: श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में प्रदीप मिश्रा जी के साथ अनुभव कीजिए शिव महात्म्य सत्संग। फ्राइडे 9 अक्टूबर सुबह 10:30 से 11:30 बजे इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो में। आस्था चैनल पर लाइव भी देखिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.siddhashram.com या कॉल करें 0208426 0678।
3: हर हर महादेव।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
2: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11, 11.
3: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danu 11, 11. Danu Properties. 11
5: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
6: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
5: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
6: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
5: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
7: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
6: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
7: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
6: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
7: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
6: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर व्हाइट हार्ट रोड लंदन SE18 1DG।
7: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk।
6: सेगा नवरात्रि, भक्ति मस्ती और गरबा।
8: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
9: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
2: वाओ, आटला स्वादिष्ट मठिया ने घुघरा शू घरे बनाव्या छे?
3: ना रे, आ तो शायोना माथी लाव्या छे।
2: वाह, तो आ मिठाई ने फरसाण पण शायोना ना ज हशे ने?
3: हा बिल्कुल।
4: सेलिब्रेट द फेस्टिव सीजन विद शायोना, एन्जॉय क्रिस्पी मठिया, डिलीशियस घुघरा, सेवरी Sun and mouth-watering mithai. Visit Shayona Shops or Sri Swaminarayan Mandir, Neasden. Also available at selected Morrisons, Sainsbury's and Tesco stores. Or shop online at shayonauk.com. Shayona, swad je tehwar ne banave khas.
5: The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with International Siddhashram Shakti Center on Saturday, 10th October at Harrow Leisure Center, Harrow, HA3, 5BD. Join us for a joyful celebration of music, dance and devotion.
6: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970.
7: Sunshine, skyscrapers and souks.
8: For less than you think. This is affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
7: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
8: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
7: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
8: Southall Travel. At all protected.
9: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी।
10: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
9: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हैरो लेजर सेंटर में।
10: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
9: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947।
10: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208970116।
9: दिवाली का जश्न अपनों के संग।
11: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
12: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: America Radio. Finalist in three nominations at the Asian Media Awards 2026.
1: हमका फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Right now at Tesco Mobile, get your most powerful upgrade yet with the iPhone 18 Pro. The ultimate pro iPhone with 250 gigs of data, all for just £61.49 a month with club card prices, saving you £72. Even better, you'll also get a £100 Tesco gift card. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Total device costs £1,295.64. Ends 1st of November. Club card and 36-month credit agreement required. Monthly rolling airtime delinking after 24 months. See tescomobile.com/terms.
2: Like our gold.
3: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208 518 9100. Tickets to India, bringing India closer.
4: श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग.
5: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा.
4: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर फ्रॉम 7:30 PM ऑनवर्ड्स.
5: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर 2 PM टू 4 PM.
4: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896-680-920.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: हर हर महादेव.
8: श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में प्रदीप मिश्रा जी के साथ अनुभव कीजिए शिव महात्म्य सत्संग. फ्राइडे 9 अक्टूबर सुबह 10:30 से 11:30 बजे इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो में. आस्था चैनल पर लाइव भी देखिए. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.siddhashram.com या कॉल करें 0208426-0678.
7: हर हर महादेव.
9: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
10: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
10: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923-227274. बुक योर टेबल टुडे.
11: Sunshine, skyscrapers and souks
12: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
11: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
12: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
11: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
12: Southall Travel. At all protected.

0: सुन रे जमी, सुन रे आसमा। नुसरत फतेह अली खान साहब भाई, आज इनको मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि इनके शो में मेरी मुलाकात नाना पाटेकर से हुई थी। मैं स्टेज शो कंडक्ट कर रहा था और नाना आए और कहने लगे कि मुझे खान साहब से वो अराब सुनना है, और नाना साहब की फरमाइश भाई खान साहब ने पूरी की। नाना पाटेकर के साथ मनीषा कोइराला भी तशरीफ लाई थी, मंच साझा किया, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। आज नाना याद आ रहे हैं, और याद आ रहे हैं जिनकी बदौलत में नाना पाटेकर से मिल सका। और मज़े की बात साहब, नाना से मैंने एक बात की, मैंने कहा मैं मुंबई आ जाऊं, अपने अभिनय की जो भूख है वो वहां आके पूरी करूं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Nana Patekar ne bhi wahi kaha bhai jo ek do aur abhinetaon ne kaha tha ki jame raho जहाँ जमे हुए हो, वहाँ का जीवन जो है, आप कितने भी बड़े सुपरस्टार बन जाएं, लेकिन वो जो लाइफ है, वो जो सड़कें हैं, वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो जो लोगों के साथ व्यवहार है, उसके साथ आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बात तो सही थी भाई, और लेकिन उस व्यवहार में, उस थोड़े हम मिले भी मंच पर ही, स्टेज पर, नीचे ऑडियंस में नहीं, तो ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकते थे, स्टेज के पीछे खड़े थे, प्रोग्राम चल रहा था, और साहब वो मुलाकात छाप बन करके मेरे हृदय पर लिखी गई। आज अचानक जब जब खबर मिली कि नाना पाटेकर नहीं रहे, तो भाई जी चाहा कि कुछ ना कुछ उनके विषय में ज़रूर बताऊँ। तो सबसे पहले तो यही बता दूं कि आप सबको पता चल चुका होगा, जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। गोवा में उन्होंने आखिरी सांस ली। नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने अपने पिता की मौत की पुष्टि की, और ये खबर आग की तरह से फैल गई पूरी दुनिया में। नाना पाटेकर का निधन आज अर्ली मॉर्निंग गोवा स्थित उनके घर पर हुआ। 75 साल के एक्टर पणजी के पास डोना पाउला स्थित उनके अपार्टमेंट में बेहोश पाए गए। जाने के बाद एक निजी अस्पताल, वहां से उनको ले जाया गया, और अस्पताल से जुड़े एक सीनियर डॉक्टर शेखर सालोंखे ने यह जानकारी दी। सालोंखे ने बताया कि हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद CPR के होते हुए भी पाटेकर को बचाया नहीं जा सका। नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, नाना पाटेकर जैसी एक अपनी दमदार छाप छोड़ने वाली शख्सियत, विशिष्ट व्यक्तित्व यानी खास पर्सनैलिटी और अनोखा प्रभाव बहुत कम अभिनेताओं में देखने को मिलता है। बहुत बड़ा योगदान था उनका फिल्म इंडस्ट्री को। उनके निधन से कला जगत में एक बहुत बड़ी रिक्तता यानी खालीपन पैदा हो गया है। मैं उनके परिवार, मित्रों और उनके असंख्य प्रशंसकों, फैंस के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। दैट वाज द स्टेटमेंट फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। बहरा भाइयों, नाना के बारे में बातें तो और भी करेंगे, और जैसा हमारे बाली भाई कहते हैं कि वो फिल्म हस्तियों के विषय में वो अपने प्रोग्राम में ज़्यादा बातें करते हैं, जुटाते हैं जानकारी, लेकिन साहब उन्हें श्रद्धांजलि देने का अधिकार हमें भी है, तो हम भी अपना कर्तव्य निभाएंगे। और जब खासकर जबकि मैंने उनके साथ मंच साझा किया हुआ है, उनसे मिला हुआ हूँ, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई हैं, तो थोड़ी सी अपनी संवेदनाएँ, थोड़ा सा अपना हृदय का बहुत जो उद्गार, सत्कार, प्यार उनके प्रति बहन भाइयों ज़रूर प्रकट करने की मुझे अनुमति चाहिए। पर पहले इस बुरी खबर के अलावा और क्या क्या समाचार हैं आज के दिन के साथ जुड़े हुए, लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूज।
1: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। अमेरिका में दुबई फ्लाइट्स के कैप्टन को, जिन्होंने जख्मी होकर के 124 74 लोगों की जान बचाई, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। एलन मस्क का इल्जाम, भारत में स्टारलिंक की एंट्री रोक रहे हैं कुछ उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट। और तेजस्वी यादव ने पटना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च निकाला है। विस्तार से खबरें। एयरटेल ने स्टारलिंक को भारत में रोकने के एलन मस्क के इल्जामों की भाई निंदा की है और उन्होंने जवाब दिया है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भारती एयरटेल ने एलन मस्क के इस इल्जाम को खारिज कर दिया है कि उनकी सेटकॉम कंपनी स्टारलिंक को भारत में काम करने से रोक रही है। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि उनका सेटकॉम उपक्रम यूटेलसेट वन वेब भी भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अमेरिका के टेनेसी राज्य में पिछले सप्ताह मौत की सजा देने की असफल कोशिश के बाद नाकाम कोशिश के बाद अस्पताल में भर्ती क्रिस्टा पाइक अब चल फिर रही है, उनकी कानूनी टीम के एक सदस्य ने जानकारी दी। कल देर रात बीबीसी के कार्यक्रम में ये बताया गया कि वकील स्टीफन फेरल ने कहा है कि उन्होंने पाइक से सीधे बात नहीं की है, हालांकि उन्हें पता चला है कि पाइक पहली बार अस्पताल के कमरे में इधर उधर टहल रही है, जबकि वो मानसिक रूप से दिमागी तौर पर यानी अभी भी धुंधलापन महसूस कर रही है। पाइक को पिछले हफ्ते जानलेवा इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत देने की कोशिश नाकाम हो गई थी और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ज्ञानेश कुमार यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पटना में आरजेडी का मार्च, तेजस्वी यादव ने कहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन प्रोसेस में सो कॉल्ड गड़बड़ी के लिए चीफ कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हम जिम्मेदार ठहराते हैं और उनके खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि फर्जी चुनाव कराकर ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के सत्ता में जाने का रास्ता साफ किया था। जब सच्चाई सामने आई तो हम सभी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एकजुट होना चाहते हैं। महाराष्ट्र में नाना पाटेकर के गांव वालों का कहना है कि नाना उनकी मदद करने में हमेशा आगे रहते थे, चैरिटी के बहुत काम करते थे। हम उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप आज बड़ी श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। एक आदमी ने बताया कि श्रीकांत नाम था उसका, उसने कहा मैं उनके घर के ठीक सामने रहता हूँ, उन्होंने पूरी जिंदगी मेरी मदद की और 2013 में जब मेरी पत्नी का निधन हुआ तो नाना ने मुझे बहुत साहस दिया और मेरे बच्चों की परवरिश में उन्होंने मेरी मदद की। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ किया नाना पाटेकर ने, थोड़ी जानकारी आगे चल करके देंगे। मनोज वाजपेयी भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्होंने नाना पाटेकर के निधन पर शोक जाहिर किया है। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी का लॉन्ग मार्च आज पहुंच रहा है पेशावर। कुछ इलाकों में वहां इंटरनेट बंद होने की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान में फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर के इस्लामाबाद के लिए शुरू किया गया लॉन्ग मार्च आज पेशावर पहुंच रहा है। इसे देखते हुए पेशावर शहर में सिक्योरिटी की जबरदस्त जो है व्यवस्था की गई है, इंतजाम किए गए हैं। पेशावर के कुछ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी के मार्च के कारण आज बंद रखने का ऐलान किया है। कल शाम के संदेशों के माध्यम से अभिभावकों को छुट्टी की सूचना दे दी गई है, कई संस्थान बंद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च पेशावर शहर से होते हुए पेशावर और चार सद्दा की सीमाओं तक पहुंच जाएगा। पेशावर के कुछ इलाकों में मोबाइल फोन सेवा बंद होने की भी खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी तक इसकी न तो पुष्टि की गई है और न ही इसका खंडन किया गया है। ये मार्च ऐसे वक्त में निकाला जा रहा है जब इमरान खान की पार्टी और पाकिस्तान की लीडरशिप के बीच गहरे मतभेद हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है। वहां सीमापुरी के इलाके में कल एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया है कि अब तक 3 महिलाओं की डेड बॉडीज बरामद हुई, साथ ही एक शव और मिला है जो एक बच्चे का लग रहा है। इस हादसे पर आम आदमी पार्टी के विधायक वीर सिंह धिंगान ने बताया कि उन्हें बुधवार को 3:30 बजे के करीब सीमापुरी से फोन आया था कि इमारत ढह गई है। राहत कार्य तब से शुरू हो गए थे। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में मुजाहिरा प्रोटेस्ट चल रहा है और अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि वो काला दिवस मनाएंगे, ब्लैक डे। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की जा रही है और आज 8 अक्टूबर को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, जंगें खत्म कराई हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि किसी भी राष्ट्रपति ने कभी कोई युद्ध खत्म नहीं कराया, मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, शायद दुनिया के पूरी तरह तबाह होने को भी मैंने रोक दिया है, इसलिए आई डिजर्व नोबेल पीस प्राइज। 2026 के नोबेल पीस प्राइज का ऐलान नॉर्वे की नोबेल समिति कल शुक्रवार को करने वाली है। पुरस्कार के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनका फैसला क्या होगा, उनकी ऐसी छवि रही है कि शायद वे मेरे जैसे लोगों को ये पुरस्कार नहीं देते हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: कच्ची थी दोस्ती, कच्चा था प्यार, कच्चा था प्यार शायद इसीलिए दिलों के बीच आ गई दरार।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
0: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
2: Dubai is the place. 11, 11.
0: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
3: Danu 11, 11. Danu Properties.
4: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
6: Witness the beauty of Jordan, Oman, Dubai, Istanbul, Doha and Abu Dhabi with TravelHubWorld.com.
7: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
8: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee. Available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
12: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baate, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
13: Jani jigar ke challe, arre mundi dhar ko karle. Pak pak pak pak pak pak pak.
14: Nahi. नहीं नहीं महमूद अंकल, माफ करना, आज बृहस्पतिवार है, लोग नाराज हो जाएंगे और फिर कुछ आसपास का माहौल, कुछ रिसेंटली घटी घटनाएं भी इजाजत नहीं देती कॉमेडी की। मुझे अच्छा लगता है आपका भाई अंदाज, आपकी आवाज और ये डायलॉग और ये गीत भी इसके साथ, लेकिन आज आज दर्द भरे गीतों का दिन है, कुछ शिकायतों का दिन है, शिकवे, कुछ परेशानियां, कुछ हालात, तो ऐसा कुछ सुनाना पड़ेगा श्रोताओं को वरना वो नाराज हो जाएंगे। कल था वक्त बुधवार का हंसने हंसाने का, और भाई थर्सडे को हम थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं और वो बातें उभार कर लाते हैं जिनको आप दिल की भड़ास कह सकते हैं, वो बवाल जो अंदर दबे छुपे रह जाती है और बहुत दुख पहुंचाते हैं। वक्त से शिकायत, ऊपर वाले से शिकायत, सबसे शिकायत।

0: जिंदगी वहाँ सार्थक माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: एवरी मॉर्निंग अ शॉपकीपर opens his doors.
3: Lights on, shutters up, staff ready.
2: But today's customers don't start on the high street.
3: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
2: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
3: They walk into your competitors.
2: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
6: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
5: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
6: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
5: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।

0: थॉट फॉर द डे, आज का विचार लाइका रेडियो पर मनोरंजन कार्यक्रम के, लाइका रेडियो गोल्ड जो हमारी सेवाएं हैं, गोल्डन सेवाएं, तो लाइका रेडियो नेटवर्क की लाइका गोल्ड रेडियो पर ये मनोरंजन प्रोग्राम का दूसरा दौर शुरू हो रहा है और इसका जो आरंभ है हम चिंतन से करते हैं। चिंतन आज का विचार, और बहनों भाइयों आज के विचार के लिए आलेख हमें कांति भाई देसाई ने भिजवाया है। कांति भाई जो है फिल्मी दुनिया के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हैं और भाई वो फिल्मी बातों के माध्यम से हमें परिचित कराते हैं। वैसे हमारे बाली भाई जो ब्रह्म भट्ट जी हैं उनसे भाई बहुत सारी फिल्मी जानकारी आप तक पहुंचती रहती है, वो भी बताएंगे, लेकिन कांति भाई चाहते हैं कि आज उनकी ओर से भी फिल्म अभिनेता स्वर्गीय नाना पाटेकर को चिंतन के रूप में श्रद्धांजलि समर्पित की जाए। नाना पाटेकर चिंतन दे सकते हैं अपने जीवन से, बिल्कुल बहन भाइयों उनका जीवन कुछ ऐसा था कि दो चार घटनाएं तो उनकी चिंतन बन जाती हैं, लेकिन पूरा जीवन कितनी सादगी से वो जी रहे थे, कितने चैरिटी कार्य वो कर रहे थे, कितने लोगों को प्रेरणा वो दे रहे थे, मदद वो दे रहे थे, और आप उन्हें देखेंगे तो कितने सीधे साधे वो रहते थे। वो मुझे मिले, कांति भाई जानते हैं, और मंच पर मिले, कार्यक्रम हो रहा था नुसरत फतेह अली खान साहब का, मैं स्टेज कंडक्ट कर रहा था, मंच संचालन अनाउंसर का काम, और स्टेज के पीछे से नाना पाटेकर और पर्दे के पीछे मनीषा कोइराला तशरीफ लाए, उनसे बात की, वो गंभीर आवाज, वो पर्सनैलिटी, बहुत सादगी के साथ उन्होंने कहा कि मैं खान साहब की आवाज में आलाप सुनने के लिए आया हूं, माय फेवरेट। उनकी फरमाइश पूरी हुई, लेकिन बहनों भाइयों आप जानते हैं कि आज अर्ली मॉर्निंग गोवा में उनका निधन हो गया। जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, मैंने फैसला किया कि कांति भाई से संपर्क करें और उनके द्वारा जुटाई गई जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। 75 वर्ष की उनकी उम्र थी, गोवा में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका असली नाम था विश्वनाथ पाटेकर। 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरूर जंजीरा में उनका जन्म हुआ था और मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के वो स्टूडेंट रहे। अभिनय की शुरुआत फिल्मों से नहीं, रंगमंच से हुई। हाँ भैर भाइयों, जो एक्टर, जो कलाकार, जो अभिनेता रंगमंच के रास्ते से फिल्मी दुनिया में प्रवेश करता है उसका अभिनय बहुत प्रभावशाली, मजा हुआ होता है, क्योंकि फिल्मों में तो रिटेक करने की इजाजत होती है भाई, एक दृश्य आप नहीं कर सके, फिर आप सुधार के दोबारा करें, 3 करें, 4 करें, पर मंच पर जो आपने कर दिया वो हो गया, अच्छा किया या बुरा किया उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, एक बार तो जो मंच पे आपने कर दिया, अब अगले नाटक में कहीं और किसी स्टेज पर आप उसे सुधार सकते हैं। नाना ने मराठी रंगमंच से अपने अभिनय की यात्रा शुरू की और शुरुआती दिनों में उन्होंने बड़ी मुश्किलों के बीच काम किया, थिएटर करते रहे, और यही रंगमंच उनकी एक्टिंग की, उनके अभिनय की सबसे बड़ी पाठशाला बनी। मैंने भाइयों, मैं बताऊं इन लोगों से, मैं बहुत प्रेरित हुआ हूं। मुंबई में मैंने नाटक देखे, महंगे होते हैं फिल्मों के मुकाबले नाटकों का प्रदर्शन, चिंतन पर सीखा उस नाटक में अभिनेता कैसे अपने भीतर के व्यक्तित्व को, जो है पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को एक्सप्रेस करता है। अपनी यूनिवर्सिटी में मुझे 3 बेस्ट एक्टर डिक्लेयर किया गया और मेरी इच्छा थी कि मैं फिल्मों में जाऊं, लेकिन नाना ने बताया कि पैसों के कारण उन्हें नाटकों की बजाय फिल्मों की ओर रुख करना पड़ा। और बहनों भाइयों, उनकी जुबानी वो खुद बताते हैं कि वो तो अभिनय स्टेज पर ही करना चाहते थे, लेकिन फिल्मों की ओर फिर कैसे मुड़ गए?
1: मैं वैसे तो अव्वल तो मैं फिल्मों में आना ही नहीं चाहता था। मैं थिएटर से बड़ा खुश था। स्मिता पाटिल की वजह से मैं फिल्मों में आया। उसका कहना था, नाना ये बड़ा कैनवास है, एक ही वक्त तुम इतना कर सकते हो, इतने लोगों तक पहुंच सकते हो, तुम्हें जो कहना है, जिस तरह की तुम्हारी सोच है, तो मैं चाहती हूँ कि तू फिल्म में आ जाए। और उसकी बदौलत मैं, उसने बहुत ही ज़बरदस्ती की, तो आज की आवाज़ में मैंने काम की थी। उसके पहले मैंने एक फिल्म की थी उसी के साथ, गमन की थी। उसके पहले मैंने डॉक्यूमेंट्रीज की थी। तो और वजह ये थी वो करने की, पैसे चाहिए थे। क्रांतिवीर का मुझे, मैं डायलॉग नहीं लगता, मुझे लगता कि वो भड़ास थी, वो जो निकल गई अंदर था, वो इर्द गिर्द एक दूसरे के गर्दन काट रहे, वो देखा था मैंने उस वक्त, उसका वो जो एक परिपाक था, वो रिएक्शन थी, या तिरंगा का जो है, वो सभी वो वही है, लेकिन डायलॉग करके वो होता नहीं। फिर एक आध लाइन कोई होती है, लोगों को पसंद आती है, फिर हाँ एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। हालांकि उसके अंतरे जो थे, गिरो साले गिरो, उस झरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिर के भी अपने अस्तित्व को खोने नहीं देता, तो वो जो अंतरे थे वो लोगों के समझ में नहीं, उन्होंने बाहट नहीं किए, वो समझने की कोशिश कम की, लेकिन उसका जो पहले चला एक मच्छर
0: आदमी को
1: उनके जहन में रहेगा,
0: एक मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता है। 75 साल की उम्र में भाई निधन हो गया नाना पाटेकर का, मगर ये आवाज़, ये अंदाज हमारे दिलों पर लिखा हुआ है और लिखा रहेगा।
2: बेटे मल्हार पाटेकर ने
0: एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता, लेकिन वो जो भाई गुस्सा था, जो नफरत उनके किरदारों में कभी आपने देखी होगी, वो उसकी अभिव्यक्ति जितनी सफलतापूर्वक कर सकते थे ना, वो अपने भीतर के उस जबरदस्त प्रेम को भी प्रकट करते थे, तो वो भी भाई कभी कभी जो है बड़ा डरावना सा लगता था जब वो बताते थे, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, कहां तक मैं जा सकता हूं तुम्हारी मोहब्बत में,
2: 26 में
0: कैसे बताऊं कौन हूं मैं और तुम क्या हो मेरे लिए, और मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए।

तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो मैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें।

0: ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरसा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की। कैसे बताओ मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ कैसे बताओ।
1: पद्मश्री नाना पाटेकर। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग गोवा में उनका निधन हो गया। भावभीनी श्रद्धांजलि उनके संवादों के माध्यम से, उनके गीतों के माध्यम से, उनकी फिल्मों के माध्यम से।
0: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम। मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मांगता बस तुमको हूं, तुम ही मेरी पहचान हो। कैसे बताओ मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो।
1: एक ही अभिनेता इतने अलग अलग रूप, भाई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गुस्से का ही प्रदर्शन कर सकते थे, उनकी एक्टिंग में कॉमेडी भी देखने को मिली। वेलकम फिल्म में वो संवाद बोलते नहीं थे, जीते थे उन्हें। उनकी आवाज में अभिनय से ज्यादा जीवन का तजुर्बा जो है वो सुनाई पड़ता था। शायद यही कारण है कि क्रांतिवीर से लेकर वेलकम तक एक ही कलाकार हमें गुस्सा भी दिला सकता था, रुला भी सकता था और हंसा भी सकता था। वो सिर्फ एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर भी थे। प्रहार फिल्म का उन्होंने डायरेक्शन भी किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फौजी की ट्रेनिंग भी दी गई थी, ली थी उन्होंने, ट्रेनिंग ली थी। और जानते हैं उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल उन्होंने बाद में इंडियन फोर्स में शामिल होकर के इसका इस्तेमाल किया, यानी भारतीय सेना में वो असलियत में जुड़े थे एक फौजी बन करके। सेना से यानी फौज से उनका लगाव था। उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में ट्रेनिंग ली, फिर मराठा लाइट इन्फेंट्री से वो जुड़े और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, उस लड़ाई के दौरान वो फौजियों के बीच में भी रहे और लेफ्टिनेंट कर्नल के जो है ऑनरेरी पद तक वो पहुंचे थे, यानी फौज में भी उन्होंने सेवाएं दी। क्या कहने नाना के, उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और क्रांतिवीर उनके करियर का मील का पत्थर थी। 1994 में उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला।

0: और गायन में भी भाई वो ये भले ही डायलॉग्स लगते हैं लेकिन वो एक गीत की तरह से उन्होंने प्रतिष्ठित किए।
1: सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। सारा एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है।
0: ऐसा लगता है जैसे एक एक लफ्ज जो है वो चिंतन है नाना पाटेकर का। बहन भाइयों, आज सुबह वो हमसे बिछड़ गए लेकिन उनका अभिनय, उनके संवाद, उनकी वो जो फिल्में हैं जिंदा रहेंगी। भावभीनी श्रद्धांजलि नाना पाटेकर के प्रशंसकों की ओर से स्वर्गीय पद्म श्री नाना पाटेकर के लिए। आज के चिंतन में वह उनके जीवन की कुछ बातें और कुछ उनकी फिल्मों की और उनकी संवादों की हमने चर्चा की। जो इंटरव्यू का थोड़ा सा अंश हमने उन्होंने जो BBC को दिया था वहाँ से कुछ एक थोड़ा सा अंश हमने प्रोग्राम में शामिल किया। और बहनों भाइयों, कांति भाई हमारे, कांति देसाई, उनके द्वारा दी गई जानकारी हमने प्रोग्राम में शामिल की। आज का चिंतन समेटते हुए हमारे भीतर का जो व्यक्तित्व है ना, उसे रोक के मत रखो, दबा के मत रखो, भले ही एक्टिंग के माध्यम से, भले ही संवाद के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, उसे आने दो बाहर नाना पाटेकर की तरह। आज का चिंतन समेटते हैं। आज का चिंतन याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज।
1: इनके आवाज से नंगे रास्ते कांपते हैं, कल पैदा हुए बच्चे एक सांस लेते हुए हांफते हैं, शैतानों की नाजायज औलाद तहलका मचा रही है, और हम भगवान के चहेते जानवर इंसान जिंदगी को गाली बनाए बैठे हैं।
0: मेरे भाइयों, गुस्सा, ये जो देखिए उन्होंने प्यार का प्रदर्शन भी किया और उन्होंने कॉमेडी भी की। वेलकम फिल्म में उनकी कॉमेडी देख करके बार बार उनके डायलॉग याद आती हैं आप सब की ओर से, उनके प्रशंसकों की ओर से। और कांति भाई देसाई की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ कार्यक्रम को समेटते हैं। याद दिला दूं, बाली ब्रह्मभट्ट भी बहुत सारी जानकारी उनके विषय में लेकर के आएंगे। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल होता है। चिंतन आज का समाप्त होता है।

0: Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, अगर आप भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं, रेट अच्छा है, उनकी सेवाओं का फायदा उठाइए. टुडे दे आर गिविंग फॉर वन पाउंड इन इंडियन करेंसी 127.45 रुपीस. यू कैन ट्रांसफर बाय ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.

0: 1964 की फिल्म जिंदगी में ये गीत मन्ना डे की आवाज से शामिल हुआ। जिंदगी शायद राजेंद्र कुमार की फिल्म थी।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: और बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड जो है आपका इंतजार कर रहा है। एपिसोड नंबर 36, टाइटल है इनसाइट्स इनटू फोस्टर केयर, होस्टेड बाय रूबी रजा। और भाई वो अब हमारे मेहमानों के साथ जो बातें कर रही हैं उनसे काफ़ी जानकारी फोस्टरिंग के विषय में और एडॉप्शन के बारे में जो है आपको विस्तार से बताई जा रही है, तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइए। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which? Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco car insurance and get your quote today. Club card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
5: Leica Gold.
6: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with International Siddhashram Shakti Center on Saturday, 10th October at Harrow Leisure Center, Harrow, HA3 5BD. Join us for a joyful celebration of music, dance and devotion.
7: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.

मेरी तरह किसी को तू अपना बना के देख, मैं रो रहा हूँ तू भी जरा मुस्कुरा के देख। तू मेरे बाजुओं में नहीं मेरे दिल में है, तू मुझसे इतना दूर नहीं, जरा पास आके देख।

0: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
1: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
0: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
1: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
0: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
1: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
0: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk।
1: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।
2: कभी कभी
3: कैच द एवरग्रीन क्लासिक कभी कभी ऑन इट्स 50th एनिवर्सरी।
4: मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए।
3: दिस संडे फ्रॉम 2 PM एट योर नियरेस्ट शोकेस सिनेमा।
4: हमने तय किया था कि हम कभी एक दूसरे के रास्ते से नहीं गुजरेंगे।
3: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। लॉग ऑन टू showcasecinemas.co.uk/saff/uk।
5: सनशाइन, स्काईस्क्रेपर्स एंड सूक्स
6: फॉर लेस देन यू थिंक। दिस इज अफोर्डेबल दुबई फ्रॉम साउथ ओल्ड ट्रैवल। वी हैव सिक्योर्ड स्पेशल पैकेजेस विद आवर टॉप होटल पार्टनर्स,
5: फ्लाइंग डायरेक्ट विद एमिरेट्स, सो यू कैन एंजॉय 3 नाइट्स फ्रॉम जस्ट £629 पर पर्सन। व्हेदर इट्स अ फैमिली हॉलिडे, अ रोमांटिक ब्रेक और अ शॉपिंग trip, Dubai has never been better value.
6: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
5: South All Travel, pay less, enjoy more.
6: South All Travel, at all protected.
7: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
8: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300।

0: Mamster Panipuri or Panipuri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत हमें लेकर चलेगा दोपहर की खबरों तक.
4: ए

0: ये दर्द, ये आवाज, ये शहनाइयां दे रही हैं दुहाई। कोई चीज अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है तो किसी से जुदाई। भाई रफी साहब ने इस गीत में जैसे जिंदगी भर दी, सारी पीड़ा उजागर कर दी बेटी की विदाई की। और रफी साहब ने बताया कि भाई ये गीत गाते हुए, रिकॉर्डिंग कराते हुए, सब सचमुच उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी की विदाई का नजारा था, वो दृश्य था जब उनकी बेटी की डोली उठी थी। लेकिन इस प्रोग्राम में ये गीत आज शामिल किसी विशेष प्रयोजन से हुआ है, और वो ये कि भाई फिल्म के हीरो, ये फिल्म थी नील कमल, और फिल्म में नायक थे कुलभूषण पंडित। कुलभूषण पंडित आज अपने जन्मदिन मना रहे हैं बहनों भाइयों, कंफ्यूज मत होइए, कौन है कुलभूषण पंडित जानते हैं आप? वो जिनकी संवाद जो है, जिनकी डायलॉग डिलीवरी जो है वर्ल्ड फेमस है, और भाई उनके प्रशंसक जो है अक्सर दोहराते हैं उनकी आवाज, उनका अंदाज। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं चड़ा सेठ, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। राजकुमार साहब का आज जन्मदिन है भाई। आज दुनिया में होते तो वो अपना जन्मदिन मना रहे होते, लेकिन हम याद करते हैं उन्हें श्रद्धा से, उनकी फिल्मों को और उनके डायलॉग्स को। उनकी फिल्म का गीत आज ये प्रोग्राम का तीसरा और अंतिम दौर, जो दो विदाई गीतों से शुरू हुआ, और ये दूसरा गीत फिल्म नील कमल से था। रवि साहब के संगीत पर रफी साहब की आवाज, ससुराल में इतना, और शब्दावली देखिए, उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। तो साहब ये प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आपको बता दूं, माय नेम इज रवि शर्मा, और मैं ये कार्यक्रम लेकर बहनों भाइयों 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कुछ दर्द भरे और कुछ आप दूसरे रंग के भी गीत आपके सामने परोसूंगा, लेकिन पहले लेट मी टेल यू द पाउंड्स रेट बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK।
1: SBI UK मनी टॉक, सेंड मनी टू इंडिया विद कॉम्पिटिटिव रेट्स विद योनो SBI UK ऑनलाइन एंड वाया द SBI UK ब्रांच।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK giving 127.45 rupees for £1 today. This is today's rate. You can transfer via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
4: Passports, tickets, kids' tablets.
5: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
4: And checking in with grandma.
5: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
4: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: So we can keep our numbers.

0: numbers for WhatsApp and bank OTPs?
1: Yep, flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
0: Holiday sorted.
2: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
3: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri with Southeast Gujarati Association, SEGA, on Sunday, 11th October at White Hart Road, London, SE18 1DG. Come along and celebrate the spirit of Navratri with us.
4: Sponsored by Star Tours. Scotland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
5: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
6: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। सुबह से शीघ्र
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
9: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
3: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इल्फर्ड IG6 3SL
2: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
3: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
2: कॉल प्रथम पटेल 0783830 2450।
4: Let's go to Vegas, Los Angeles, New York, Miami and Disneyland Orlando with TravelHubWorld.com.
5: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
6: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicky Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. ये है Jaimin Foods का Vibe Check.
7: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food के variety of snacks, khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
6: Jaimin Foods, desi cravings, available at nearest ethnic grocery stores.
8: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
9: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
10: और बहनों भाइयों, आपको याद दिला दें कि इस सप्ताह के जो आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक नहीं, आर्टिस्ट्स ऑफ द वीक कह सकते हैं उनको, क्योंकि दो भाई हैं और दोनों ने भाई संगीत के क्षेत्र में कुछ समय तक बड़ी धूम मचाई है. नाम है उनका आनंद मिलिंद. रोमांटिक गीतों को जहां उन्होंने धुनों में पिरोया, कुछ ऐसी धुनें भी बनाई कि हर संगीत प्रेमी उनको सुन करके थोड़ा बहुत जरूर रोया. आंखों को आंसुओं से धोया.

0: सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित संगीतकार के होनहार पुत्र आनंद मिलिंद आर द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। पर बहनों भाइयों, उनके लिए एक संगीत के घराने से संबंध रखते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री में संगीतकारों के रूप में उतरना इतना आसान नहीं था। उन्होंने भी मुश्किलों का सामना किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के असिस्टेंट भी वो रहे। पर साहब, जैसे कि ऐसे ऊंचे खानदान से और भाई नामी ग्रामी संगीतकार से संबंध रखने का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। नुकसान ये कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। उनके पिता की तरह वो भी धुने बनाएंगे, छा जाएंगे। पर काफ़ी देर तक तो साहब नए संगीतकारों पर कोई दाव लगाने को तैयार नहीं था। और फिर फिल्म मिली तो फिल्म आई और चली गई, कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाई। कल भी बात करेंगे इनके बारे में, क्योंकि मेरे कार्यक्रमों में तो इनका अंतिम जो है वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक के रूप में गीत कल शामिल होगा। आनंद मिलिंद, आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क। भाई कुछ संदेश भी हैं हमारे स्क्रीन पर जो आपके साथ हमें साझा करने हैं, और उनमें एक ये साउथ होल ट्रैवल के बारे में। साउथ होल ट्रैवल याद दिला रहे हैं कि भाई उनकी जो दुबई डील्स है ना, बड़ी फेमस, वो उपलब्ध हैं। और क्या है उन डील्स में? वेल, एट देयर सेलेक्टेड पार्टनर्स होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स जस्ट फ्रॉम £629 पर पर्सन फॉर 3 nights. ट्रेवल बाई 10th December. दिस इज द कंडीशन। एंड साउथ होल ट्रेवल का फोन नंबर है 0208-843-4444, और यू कैन विजिट southholetravel.co.in.
1: ये है लाइका गोल्ड। लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर. This is the Leica Radio Network.

0: फिर आंख से आंसू बरसे, फिर छाई घटा घनघोर। लिखने वालों से कह दो लिखें एक कहानी और, दर्द की, वियोग की। भाई अपने रूठते हैं, साथ छूटते हैं, दिल टूटते हैं, तभी ऐसे गीत लिखे जाते हैं, गुथे जाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना। और बहनों भाइयों, प्रोग्राम को समेटने से पहले बता दूं कि आज गौरी खान अपना जन्मदिन मना रही हैं, शाहरुख की पत्नी। अब साहब गौरी खान से भी मैं मिला, आप कहेंगे कि जी हर किसी से मिले आप, बंदे हैं कि कोई जादूगर है, फरिश्ते हैं कोई, भाई हर जगह मौजूद हो जाते हैं। जैसे वो कोर्ट में होते हैं ना गवाह, वो हर घटना के लिए गवाही देते हैं, तो जज भी उनसे ये नहीं पूछता कि भाई तुम कैसे फरिश्ते हो, कि कहीं भी जाकर के घटना के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए मौजूद हो जाते हैं, वहाँ जा कुछ होने वाला होता है। पर रवि शर्मा गौरी खान से मिला है और बहुत अच्छी तरह, लगभग शाहरुख भी साथ थे और दिन भर हमने साथ गुजारा था यहाँ लंदन में ही। और भाई आज उनका जन्मदिन है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू गौरी। राजकुमार साहब का भी जन्मदिन, 1926 में जन्मे थे। कुलभूषण पंडित, ओ मदर इंडिया, क्या फिल्म थी भाई। और भी नई रोशनी और नीलकमल, कैसी कैसी फिल्में दी थी। मोना सिंह भी आज ही जन्मी थी, वो जस्सी जैसी कोई नहीं। और मोना सिंह ने कई और फिल्मों में भी काम किया, बड़ा अच्छे अभिनय की स्वामिनी थी वो। स्वामिनी है भाई, कहीं गई नहीं अभी। इसके अलावा आज डेथ एनिवर्सरी है जेपी, और जेपी कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी। उनके बारे में एक बार तो पहले भाई झूठी खबर फैल गई कि उनकी डेथ हो गई है, बड़ी फजीहत हुई थी। फिर रेडियो पर अनाउंसमेंट भी हो गई, दर्द भरा संगीत बजने लगा। फिर उसके बाद उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, पार्लियामेंट में आके उनको बयान देना पड़ा कि भाई ये गलती हो गई है, जयप्रकाश नारायण ठीक हैं, ठीक ठाक हैं और उनकी मृत्यु नहीं हुई है। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी के बारे में झूठी खबर फैलती है ना मृत्यु की, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। नेचुरली उम्र तो बढ़ जाती है भाई, क्योंकि वो जिंदा है और जिएंगे अभी, लेकिन ये मान्यता भी है। और आज डेथ एनिवर्सरी है एक महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना है?
1: Across Greater London, this is like a gold, 10:35 AM.
0: यस यस यस, दिस इज लाइक अ गोल्ड, हमें पता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम बता रहे थे बहन भाइयों, मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, कहानीकार हुए हैं, लेखक हुए। पहले धनपत राय नाम से वो लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने साहित्य अपने नाम से भी लिखा। तो उनकी फिल्म का, उनके नावल पर, उनके उपन्यास पर बनी एक फिल्म का गीत सुनवाते हुए हम आपसे विदा लेंगे। तो आप अब बाली भाई का इंतज़ार कीजिए और रवि शर्मा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के, उर्दू में भी लिखा उन्होंने, बहुत बड़े साहित्यकार। मुंशी प्रेमचंद राइटर, डाइड ऑन 8th of October इन 1936, जबकि जयप्रकाश नारायण युग प्रवर्तक भाई, ही डाइड On 8th of October in 1979. आपके भाई जन्मदिन मनाने वालों के नाम मैंने बताए, लेकिन आज नाना पाटेकर की दुखद मृत्यु हुई, उस पर विनम्र श्रद्धांजलि, हार्दिक संवेदना। और इन भावों के साथ रवि शर्मा आपकी अनुमति चाहता है। Have a superb day. Bye bye.

shocking and with disbelief that I have to say that the great actor Nana Patekar ji is no more. Born on 1st of January 1951 till this morning, 8th of October 2026, at the age of 75, he passed away. He was in Goa at Dona Paola. It's a neighboring beach of Dona Paola in Panaji. Panaji is also known as Panjim, the capital of North Goa. This place, Dona Paola, is where Ek Duje Ke Liye was shot. Us film ke kafi scenes wahan pe the. Nana was with his nephew Prasad. Inhone jitni bhi filmon mein adakari ki, usme se awards itne sare jeete. Mujhe malum hai, as an actor in Parinda, इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था. दूसरी फिल्म थी अंगार एज द बेस्ट विलेन, क्रांतिवीर एज द बेस्ट एक्टर एंड अपहरण एज द बेस्ट विलेन. दूसरी फिल्म ये थी जिसमें नॉमिनेशंस मिले थे, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ऑफ अंधा युद्ध, राजू बन गया जेंटलमैन, तिरंगा, फिर खामोशी द म्यूजिकल, उसमें बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन मिली थी. ही रियली डिजर्व्ड अवार्ड्स. बेस्ट विलेन इन शक्ति, और देखा जाए तो नेशनल अवार्ड्स इनको मिले थे, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर परिंदा, बेस्ट एक्टर क्रांतिवीर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अग्नि साक्षी. अभी नाना जी के बारे में जितना कहूँ कम है. तीन चार बार उनको मिलने का अवसर हुआ. उन्होंने मुझे बुलाया था. उनका एक प्ले था, ही प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड. दिस वॉज द प्ले पुरुष विद आयशा जुल्का, हु वॉज वंस अपॉन अ टाइम हिज गर्लफ्रेंड. सो वॉज मनीषा कोइराला. रिसेंटली इन्होंने एक कैमियो रोल किया था इन द फिल्म सूबेदार विद अनिल कपूर. दैट वॉज आई थिंक the last time he sort of appeared. Kitni filme ki, Meera Nayyar ki Salaam Bombay 1988 mein bahut praise mila unko wahan. And then uske baad he became a crime lord. Crime drama tha Parinda jo award mila tha unko. Nana ji ke bare mein कहूँ तो ही वॉज लव्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई फैंस बिकॉज ऑफ हिज बोल्डनेस. ही वॉज सो आउट स्पोकन. जहाँ भी जाते थे, इनके लंबे लंबे जो डायलॉग्स थे वो जब पेश करते थे,

0: आज। मैंने कहा मेहुल जी आप रेडियो पे आके बात कर सकेंगे, बिकॉज इट्स सच अ कोइंसिडेंस, क्रांतिवीर, कोहराम, तिरंगा, ये सब फिल्में नाना पाटेकर डिड नॉट रिपीट एनी डायरेक्टर ही यूज टू वर्क विद, बट मेहुल कुमार जी के साथ उनका एक स्पेशल गहरा रिश्ता था। इसलिए मैं मेहुल कुमार जी को लाना चाहता था, क्योंकि उन्होंने राजकुमार के साथ भी काम किया। आज इट्स द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजकुमार एंड द डेथ ऑफ नाना पाटेकर, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो मेहुल कुमार जी अगर मुझे फोन पे मिल जाएंगे, बिकॉज ही इज एक्चुअली नाउ इन द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग द फैमिली फॉर नानाज फ्यूनरल एटसेट्रा। आगे मैं एक दो गाने उनके सुनाऊंगा एंड देन विल गेट ऑन टू आवर यूजुअल जर्नी। ओम शांति टू नाना पाटेकर।
1: अक्रॉस लंदन, दिस इज बाली ब्रांबाट ऑन लाइक ए गोल्ड।
0: लाइक अ गोल्ड रेडियो वुड लाइक टू गिव कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली। ओम शांति टू अ ग्रेट एक्टर नाना पाटेकर।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627
3: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: फिल्म गुलामे मुस्तफा 1997 की फिल्म, कविता कृष्णमूर्ति एंड हरिहरन सिंगिंग, वी आर रिमेम्बरिंग नाना पाटेकर जी।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: I remember meeting Nana Patekar ji at the Juhu Centaur. Ek hall tha, Harbour Hall, Juhu Centaur mein. Wo abhi band ho chuka tha because of property issues, and sometimes. People used to get together there for drinks. तो मैं जब वहाँ गया तो by the pool side नाना पाटेकर जी खड़े थे वहाँ with मणि रत्नम, the great director, film दिल से etc. So वो बातें कर रहे थे और उन्होंने immediately मेरे को देखा तो कहा कि बाली इधर आ इधर आ इधर आ, I want to introduce you to मणि रत्नम जी. I said, who doesn't know him? He said, मणि रत्नम जी, this is Bali, you know. And he says, London से आया है छोकरा, you know. He said, he's come from London and he's always on television and in parties and he's a party animal sort of thing, you know. And we were having a good laugh and he introduced me and he says, अच्छा छोकरा है, इसको गाना गवाना मेरे लिए. So there was a film in which the song was Love Rap and उस फिल्म के अंदर मेरे को बुलाना था इन्होंने रैप करने के लिए, लेकिन मैं लंदन में था. सो आई मिस्ड आउट द अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग द रैप. कभी 101, कभी 102, ओ लव फीवर और समथिंग लाइक दैट गाना जो था. सो आई मिस्ड आउट एंड ऑफ कोर्स अमित कुमार वाज देयर एंड ही दे ऑल गॉट टुगेदर एंड डिड द रैपिंग एंड एवरीथिंग. इट वाज नाना हिमसेल्फ आल्सो, he did the rapping in that one and he said, ye tere liye rakha tha, tu tha nahi yahan, you know. Afterwards when he met me, I went to see his play Purush and what a beautiful play. He took it all over America as well. To hamara ek common agenda tha ke ek driver tha mera, he was a Marathi guy and he was under trial for 3 months kyunki mera driver chala gaya tha gaon. सो मैंने उसको ट्रायल पे रखा था. तो एक दिन उसको पता चला कि नाना पाटेकर इज़ लुकिंग फॉर अ ड्राइवर. सो मेरे जाने बगैर वो ड्राइवर वहाँ उनको मिलने चला गया और उन्होंने मराठी में बात की और कहा कि उसने बताया नहीं कि वो मेरे लिए बाली ब्रह्मट के लिए काम कर रहा है. सो नाना जी ने कहा कि अच्छा है, आ जा तू कल से. सो ही केम एंड टोल्ड मी, ही सेज, बाली जी आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू गो बिकॉज नाना जी की नौकरी मिली है. मैंने बोला अरे वाह, ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन, तू जा, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट. वो चला गया और मेरे पास आया अबाउट 7-8 दिन के बाद एंड ही सेज, आई हैव लेफ्ट दैट जॉब, आई हैव लेफ्ट दैट जॉब. मैंने सेड, क्या हुआ? ऐसे इनका टेम्पर बहुत ख़राब है. एक दिन रात को ना घोड़ा दिखा दिया, घोड़ा माने बंदूक. तो बोलते कि मेरे माथे पे बंदूक रख दी और इन्होंने गुस्सा किया मेरे से. तो 2 दिन से मेरे को बुखार था और मैं सो नहीं पाया. इसे आई डोंट थिंक बोलते कि लेट नाइट बहुत हो जाती है तो मेरे को वापस आना है. बट देन आई हैव ऑलरेडी हैड अ ड्राइवर बाय देन, यू नो. बट दैट वाज वन इंसिडेंट एंड आई टोल्ड नाना जी अबाउट इट एंड ही लाफ्ड एंड लाफ्ड, यू नो, अबाउट इट. एंड देयर वाज वन कॉमन रेस्टोरेंट हम दोनों की फेवरेट थी, विच वॉज कॉल्ड रिदम रेस्टोरेंट इन लोखंडवाला. अभी बंद हो चुकी है, मेरे को लास्ट ईयर पता चला. वहाँ पे नाना पाटेकर जी उनको इंस्ट्रक्शन देते थे कि मेरे को कीमा खाना है बट आई वॉन्ट द कीमा अकॉर्डिंग टू माई स्टाइल. तो उन्होंने कहा कि ये कीमा मेरे को ऐसा चाहिए. तो उन्होंने रेसिपी दी और इतना ब्यूटीफुल कीमा था वो, उन्होंने जो रेसिपी दी थी. तो मैं जब रेस्टोरेंट पे गया मैंने कहा कि कीमा मटर मेरे को चाहिए. बोले कि नाना जी ने हमको बोला था एक रेसिपी, वो आपको दूं? तो मैंने बोला ऑफ कोर्स, नाना जी तो बड़ा अच्छा खाना भी पकाते हैं. सो देन आई ट्राइड दैट कीमा एंड आई गॉट हुक्ड ऑन इट. इट वॉज हॉट and it had a lot of green chilies in it, it had a lot of ginger in it and ekdam sukha tha and it was so beautifully prepared. So I called it Nana Patekar's keema, you know, Nana ji's keema. So I told him, I said, us restaurant mein maine famous kar diya hai, jo bhi jata hai wahan bole wo Nana Patekar wala keema khana hai. So then that restaurant started selling keema like anything because they said Nana Patekar ji wala keema. And all my friends, including the assistant commissioner of police and all of them, we used to go there with Shravan ji of Nadeem Shravan, fir Lawrence D'Souza ji. Hum jab bhi jate the, maine unko introduce kiya tha Nana Patekar ji ka keema. So that those were some of the common things that I experienced with Nana Patekar ji. And one day a cousin of mine was buying a car, and that was a Skoda, and he was at the showroom, and Nana Patekar ji was there also buying a car. So he said, Nana ji is here, he phoned me. I said, phone de. I said, Nana ji, gaadi khareed rahe ho, kaun se color ki loge? Kaun bol raha hai ji? Maine kaha, Bali Brahmbhatt. Are, tere ko kaise pata chala? Bole, mera cousin hai ye. तो बोलते अच्छा अच्छा तेरे को ही मैंने फ़ोन करना था, तेरा ढूंढ रहा था नंबर में, वो पुरुष मेरा प्ले है ना उसमें तेरे को आना है, वहाँ पे बात हुई थी हमारी. सो दैट वॉज अ फ्यू इंस्टेंसेज विद नाना पाटेकर जी मेरे साथ.
2: जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या?
3: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3204, Indian rupees 127.86, Afghan Afghanis 85.80, Pakistani rupees 365.79, Kenyan shillings 171.34 and Mauritian rupees 62.72.
5: Leica Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £100.31 per gram.
4: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
6: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
7: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
8: What would my dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
9: To aaiye Godfather & Co. Vivek House Bar & Kitchen.
8: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
9: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
10: Do you know, you can open your NRE and NRO account from the comfort of your home by requesting us for a home visit. You can also visit any ICICI Bank UK branch or call us at 0344-412-4444. You will be transaction ready with immediate access to a debit card and a checkbook. Just reach out to ICICI Bank UK and they have a solution for your banking in the UK or in India. ICICI Bank UK.
11: ICICI Bank UK is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
12: NRI products and service are subjected to Reserve Bank of India and applicable laws in India, TNCs apply.
13: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
14: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
13: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
14: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
13: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
15: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
16: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri with International Siddhashram Shakti Centre on Saturday, 10th October at Harrow Leisure Centre, Harrow, HA3, 5BD. Join us for a joyful celebration of music, dance and devotion.
17: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970.
18: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
19: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
18: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
19: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
18: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
19: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
18: टिकट बुक करो segalondon.co.uk।
19: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।
20: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
21: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ। 9 से 18 अक्टूबर द विलोज, फॉरेस्ट रोड, इल्फर्ड, IG6 3SL।
20: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
21: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
20: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
22: To buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
23: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
24: Dubai is the place. 11,
23: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
25: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
26: Time to go on a cruise. Royal Caribbean, Norwegian, Celebrity, Carnival, MSC, Princess Cruise. Call Travel Hub.
27: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833.
26: Travel Hub, best service with unbeatable price.
27: At all protected.
26: Visit travelhubworld.com.
28: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
29: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
30: Across London, this is Ballybrambat on Leica Gold.

0: जो इनकी राइवलरी जो थी दिलीप कुमार साहब के साथ, एक्शन ड्रामा तिरंगा 1993 का, ही कुड प्रूव दैट ही कैरीड मूवीज प्योरली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पर्सनैलिटी। और इनका वो तकिया कलाम जो था जानी, जी हाँ, विद द यूनिक बैरीटोन वॉइस एंड स्लो रिदमिक डायलॉग डिलीवरी। ही डिड नॉट जस्ट स्पीक लाइन्स, ही, यू कैन से ही पॉज्ड, ही वेड हिज वर्ड्स एंड ही ड्रॉप देम लाइक हैवी वेट्स। और सिग्नेचर जो कैच फ्रेज था जानी, इट बिकेम अ प्रीफिक्स ऑन हिज डायलॉग्स। कुछ भी बोलने से पहले ही वुड से जानी, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, चनोई सेठ को बोला वक्त में। ऐसे ऐसे डायलॉग्स तो कितने हजारों डायलॉग्स हैं, काश मुझे वक्त मिलता और मैं आपको सारे डायलॉग सुना देता। लेकिन वो जानी, उनकी जो अदा थी बोलने की, एंड दो एटीट्यूड जो था ना एरोगेंस का, वेरी स्टाइलिश, यू नो, वो जब भी कुछ डायलॉग बोलते थे डायरेक्टली एट द पर्सन ही वॉज थ्रेटनिंग ऑन द स्क्रीन, ही डिड नॉट लुक डायरेक्टली इन अ पर्सन्स आईज, वो कभी नहीं देखते थे। ही वुड लुक एट हिज हैंड्स, ही वुड डस्ट ऑफ हिज जैकेट और फिडल विद अ सिगरेट and letting the sheer weight of his voice do the intimidating। unki jo ek style thi, jani hum tumhe marenge aur zarur marenge lekin wo waqt bhi hamara hoga, bandook bhi hamari hogi aur goli bhi hamari। film saudagar aur pakiza mein aapke paon dekhe bahut haseen hai, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और तिरंगा में इनका डायलॉग था, हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। और बुलंदी एक फिल्म थी, चुनौती तो बादशाह को दी जाती है, हम तो फकीर हैं जानी। ऐसे ऐसे कितने खूबसूरत डायलॉग्स इनके, राजकुमार वी आर रिमेम्बरिंग वेरी फॉन्डली ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी। लेट्स लिसन टू सम ऑफ हिज सॉन्ग्स, सम ग्रेट सॉन्ग्स, बिलीव यू मी, आपने जब भी सुना आजा तुझको पुकारे मेरे मेरा प्यार नीलकमल का, आपको पता ही चल जाता है कि राजकुमार की एंट्री हुई है। नेक्स्ट आएगा काजल फिल्म का, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। फिर हीर रांझा में आएंगे वो, एंड देन एक फिल्म है चंबल की कसम, अगर चांस मिला तो वो भी सुनाऊंगा। एक रफ़ी साहब का जो गाना था लाल पत्थर का, उसके बाद मुकेश जी गाएंगे फूल बने अंगारे का, एंड देन दोनों रफ़ी साहब और मुकेश जी दोनों गाएंगे एक गाना, वो मैं एंड ऑफ द आवर सुनाऊंगा। सुनते रहिएगा, लुत्फ उठाते रहिएगा। मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com। इट इज द 457th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स। और आगे जाते हुए हम आपको बताएंगे, दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स, और ड्यूरिंग नवरात्रि पीरियड ऑफकोर्स फरारी जो भी नाश्ता इन्होंने रिलीज़ किया है उनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप देखेंगे हमारे इंस्टाग्राम पे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 127.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening

0: रफी साहब ने गाया फॉर राजकुमार इन लाल पत्थर, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन और लिरिक्स लिखी नीरज जी ने 1971। नेक्स्ट मुकेश जी,
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
0: यह गाना फिल्म फूल बने अंगारे 1963, पिक्चराइज्ड ऑफ कोर्स ऑन राजकुमार, म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का और आनंद बख्शी की लिरिक्स। Enjoy the song to the fullest. Chand aahein bhare.

0: सब दे।
1: वाह वाह, क्या गाना है ना। और नेक्स्ट गाना आपने रफी साहब को सुना, आपने मुकेश जी को सुना, अभी रफी साहब और मुकेश जी दोनों शैलेंद्र ने लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया। एक गाना है फिल्म उजाला, जब राजकुमार जी ने कहा कि पूरी फिल्म में मेरे को कोई गाना नहीं मिल रहा, तो फिर ये गाना उनको उन पे और शमी कपूर पे पिक्चराइज हुआ।
2: Across London, this is Bali Brambat on Like a Gold.
1: यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, शमी कपूर एंड राजकुमार। आई होप यू एंजॉयड द ट्रिब्यूट।
3: हमारी पे मत जाओ यारो सूरत, हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हम

0: रहा हूँ।
1: ये तो बताओ कोई पता चला?
2: गुरु गुरु,
3: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
2: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
3: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
1: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
5: टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
8: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
9: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
8: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
9: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 0192322-7274। बुक योर टेबल टुडे।
10: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 0746699755। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 0746699755।
11: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं? तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
12: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra?
13: Search is changing.
14: Customers aren't just using Google anymore.
13: They're asking AI.
14: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
13: One business, one recommendation.
14: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
13: Will your business be the answer?
14: Or the one that got left behind?
13: The future of search has already started.
14: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
13: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
15: Escape to Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Japan, Korea and Philippines with TravelHubWorld.com.
16: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
15: TravelHub, best service with unbeatable price.
16: At all protected.
15: Visit TravelHubWorld.com.
17: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. ये है Jaimin Foods का Vibe Check.
18: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food के variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
17: Jaimin Foods, desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
19: The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with Southeast Gujarati Association, SEGA, on Sunday, 11th October at White Hart Road, London, SE18 1DG. Come along and celebrate the spirit of Navratri with us.
20: Sponsored by Star Tours. Scotland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
21: Laika Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB digital radio पर, Alexa पे बोलो play Laika Gold और online सुनो laikagold.com पे।
22: Artist of the week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: वाओ, देव साहब ने इंट्रोड्यूस किया देश परदेश में, और टीना मुनिम लता जी ने गाया फॉर टीना मुनिम।
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: London's biggest classics all day. Like a gold.
0: And this is Usha Kiran. उनके बारे में बात करेंगे, क्या गाना है सुनिए पहले।

0: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London. The Lyca Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with International Siddhashram Shakti Centre on Saturday, 10th October at Harrow Leisure Centre, Harrow, HA3 5BD. Join us for a joyful celebration of music, dance and devotion.
1: Sponsored by Star Tours. Scotland jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी।
4: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
3: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हैरो लेजर सेंटर में।
4: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
3: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947।
4: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116।
3: दिवाली का जश्न अपनों के संग।
5: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
6: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
5: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
6: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
5: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
6: Exclusive radio partner Lyca Radio Network.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Experience the magic of Mexico City, Cancun, Mayakoba, Tulum and Caribbean Islands with TravelHubWorld.com.
2: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
8: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
8: Visit TravelHubWorld.com.
9: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
10: Carotino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
11: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.

डगलो मुछो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती, अरे लांबो डगलो मुछो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती, अरे बोल बोल तो थोड़ी थोड़ी खेल सभी लो गुजराती, अरे तन छोटू पण मन मोटू, अरे तन छोटू पण मन मोटू छे खमीर बनती जाती, अरे भले लाग तो घोड़ो तू खेल सभी लो गुजराती, भाई खेल सभी लो गुजराती भाई।

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: झूठ बोला,
3: झूठ बोला,
2: सैंडी शाह ने झूठ बोला
0: ऑन गोल्ड ड्राइव.
4: थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर एवरीवन हु टुक पार्ट सो फार. आई वाज जस्ट रीडिंग सम ऑफ दीस फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आई थॉट आई विल कम बैक टू अ कपल ऑफ देम प्रोबब्ली नियर द एंड ऑफ दिस आवर, बट इन द मीन टाइम आई वांट टू डू दिस एंड प्ले यू अनदर सॉन्ग. सो थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर दोज हु हैव टेकन पार्ट. इफ यू हैवंट ऑलरेडी डन सो प्लीज डू दिस, योर लास्ट चांस ऑन झूठ बोला. सो they're both to do with the same incident in life, and it was the Great Fire of London. So the first statement is, the Great Fire of London destroyed nearly 13,000 homes when it happened in 1666. B, the fire lasted for almost 7 days. Which of these statements is a lie? That's all you need to tell me.
0: WhatsApp message Like a Gold now on 07444 232323. This is Sandy Shah on Gold Drive. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
1: Hello, wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Like a Gold and Like a Radio Midlands.

0: गोल ड्राइव विद सैंडी शाह। ये है लाइका गोल्ड। श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग।
1: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा।
0: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर फ्रॉम 7:30 PM ऑनवर्ड्स।
1: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर 2 PM टू 4 PM।
0: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896-680-920। छो लंदन तैयार छो, अब बस कुछ दिन बाकी। SKLPC प्रस्तुत करते हैं बैकस्टेज सिबलिंग्स लाइव। भजनों की धुन पर झूमो, गाओ और साथ मिलकर रंग जमाओ। 9 अक्टूबर रात 8 बजे और 10 अक्टूबर शाम 7 बजे SKLPC UK इंडिया गार्डन्स वेस्ट एंड रोड। तो चलो साथे मणि ने गाइए। बुक करें SKLPC.com/BSS। रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
2: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9-18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
1: रात 8 बजे से टिल लेट डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल
2: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फात्सुमा
1: कॉल प्रथम पटेल 07838302450
3: खाकरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाकरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
5: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: Let's go to Vegas, Los Angeles, New York, Miami and Disneyland Orlando with TravelHubWorld.com.
7: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
8: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at RadioCentre.org. Assuming you want to get noticed.
9: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: से निराला।
1: मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
4: Carotino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
7: सैंडी शाह कंटिन्यूज विद लंदन्स बिगेस्ट बॉलीवुड क्लासिक्स।
8: This is Leica Gold Greater London. Now also available in Greater Manchester, Leeds and Bradford.

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. Delays on the M4 this evening onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. It's slowing on the A312, the partway southbound before the M4 Junction 3. Kensington Road still blocked in both directions between Dolphin Road and Ealing Road. It's due to an accident, traffic queuing in the area. Queuing on the A312 Church Road and Mandeville Road from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to North Holt Station. A406 North Circular Road slowing both ways at the Hangar Lane to Arete. Queuing on the A40 Western Avenue westbound before Gypsy Corner to the Tube, and severe delays on the Northern Line due to an earlier signalling problem at Stockwell. That's your latest traffic and travel.
2: Something's calling at Tesco Mobile, a £100 Tesco gift card. Get yours with deals like our Samsung Galaxy S26 FE with 12 gigs of data for just £29.99 a month for 36 months with club card prices, saving you £324. Pick up your gift card today. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Total device costs £593.64. Ends 1st of November. Club card and 36-month credit agreement required. Monthly rolling airtime delinking after 24 months. See tescomobile.com/terms.
0: Yeah, like a gold.
3: Like a gold.
4: Har har Mahadev.
5: श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में प्रदीप मिश्रा जी के साथ अनुभव कीजिए शिव महात्म्य सत्संग फ्राइडे 9 अक्टूबर सुबह 10:30 से 11:30 बजे इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो में आस्था चैनल पर लाइव भी देखिए अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.siddhashram.com या कॉल करें 020-8426-0678
4: हर हर महादेव
6: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208 518 9100. Tickets to India, bringing India closer.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
10: इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी
11: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल
10: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहत गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हैरो लेजर सेंटर में
11: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल
10: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947
11: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116
10: दिवाली का जश्न अपनों के संग
12: बोले तूने क्या कर रहा है
13: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
12: ये तो बताओ कोई पता चला
13: गुरु
14: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर
15: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
14: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November टू बुक कॉल 0208-514-5400 बुक ऑनलाइन एट इवेंट Bright.
16: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: Sunshine, skyscrapers and souks.
18: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
17: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
18: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
17: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
18: Southall Travel. At all protected.
19: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
20: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
21: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
22: Add crunch to your celebrations with Haldirams.
23: Aloo Bhujia, Punjabi Tadka, Bombay Mix, Khatta Meetha, Nimbu Masala and more. Made for sharing.
22: Shop at HaldiramUK.com or at your nearest grocery store.
24: Haldirams.
25: Up next, Anisa Nasir with The Big Show on Like a Gold.
26: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे.
27: ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: मौत ना मर तो अपनी ही फिक्र कर, बुरा हर काम मेरा
1: कयामत नाम मेरा।
0: मैं चुटकी से मसल दूं,
1: मैं जूते से कुचल दूं,
0: जुल्म से मेरा रिश्ता
1: मौत का मैं फरिश्ता, मौत का मैं फरिश्ता।
0: नहीं कोई मेरा सानी,
1: तू मांगे गाना पानी।
0: हो काला नाग हूँ मैं
1: तो जलती आग हूँ मैं,
0: मिटा कर खाक कर दूं,
1: जला कर राख कर दूं।
0: गुनाह और
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store. Gold Drive with Sandy Shah.

0: 90s का जब भी कोई गीत सुनवाती हूँ सबसे पहले मेरा ध्यान हनीफ साहब की जानिब जाता है, टोरंटो में सुनते हैं हमें, और कभी ऐसा गीत सुने तो ही मैसेज भिजवाते हैं, अगर सुन रहे हैं तो मैसेज भिजवा दें बहुत मसरूफ होते हैं, हाँ वेले तो ऐसे ही हैं बस, बाकी तो सारे मसरूफ ने। साथी मेरे तेरे बिना वहशत है, अजियत है, बड़ी सख्त घुटन है, वहशत है, अजियत है, बड़ी सख्त घुटन है, तन्हाई से कह दो मेरे अंदर नहीं ठहरे, दरवाजे हजारों थे तेरे बाद भी लेकिन सायल ये तेरे दर के किसी पर नहीं ठहरे। क्या कॉमन है जी गीतों में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you up to 127.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online. Yeah, but SBI Yono mobile app ke zariye terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Aur bhi aaj to maidan maar liya Dubai walon ne. Kya baat hai? और राजा बन गए हैं जनाब उमर साहब, सबसे पहले आज उन्होंने जवाब दिया और हमेशा वैसे उनकी कोशिश रहती है कि मैं राजा ज़रूर बनूं। अच्छी आपको मैंने पहले भी कितनी बार बताया कि आप ऑलरेडी राजा हो, यमनी राजा। वेरी वेल डन उमर जी, गुड ट्राई। और आपके साथ साथ चौधरी फरीद अहमद जी, आपका भी जवाब सही है और बाकी जितने भी जवाब अब तक आए हैं इंक्लूडिंग तारिक राहिल जी, कहते जीना एक शुगल है सो करते रहे हैं हम, है जिंदगी गवाह के मरते रहे हैं हम, ना ऐसा कुछ कॉमन नहीं है।
1: This is Anisa Nasir with

0: ਬੇ ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
3: लाइक अ गोल्ड लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो LikeAGold.com पे Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: तुम बिन जाऊं कहां कि दुनिया में आके फिर कुछ भी नहीं चाहा सिर्फ उन्हें चाहने के बिना. लीजिए भी आरजू को रूह में गम बन के रहना आ गया. आरजू को रूह में गम बन के रहना आ गया. सहते सहते हमको आखिर रंज सहना आ गया. दिल का खून आंखों में खिंच आया. चलो अच्छा हुआ मेरी आंखों को मेरा अहवाल कहना आ गया. सहल हो जाएगी मुश्किल जब्ते सोजो सांस की. खूने दिल को आंख से जिस रोज बहना आ गया. मैं किसी से अपने दिल की बात कह सकता ना था. अब सुखन की आड़ में क्या कुछ ना कहना आ गया. खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला. शेरों के इंतखाब ने गीतों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे. लो जी रुसवा तो काफ़ी लोग हो गए गलत जवाब भिजवा के, जिनमें मनु जी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट हैं. यार कॉमन नहीं है. जैजी जी, फरजाना जी, पहला जवाब भी हम एक्सेप्ट करते हैं. लिहाजा जो लोग पहले गलत भिजवा के फिर 10-10 सही जवाब भिजवाने की कोशिश में, उनमें से भी 9 तो गलत ही होते हैं. लेकिन आप प्लीज़ अपनी नाजुक सी उंगलियों को तकलीफ मत दिया करें जब आप एक दफ़ा मैसेज भेज दें, मतलब थीम को लेकर. बाकी तो मतलब जितने मर्जी मैसेज भेजें. सैम शहजाद जी, श्वेता जी, नवीता जी, सीमा हयाती जी, फिक्र ना करें आपका जवाब गलत है. आफ्ताब गिल जी, आपका भी जवाब सही नहीं, और ताहिर जी आपका भी नहीं. उमर जी राजा ऑफ द आवर हैं. चौधरी फरीद अहमद साहब को वजीर बना देते हैं. दीनी जी आप हो गई रानी. मंजीत संगर जी, अमित पटेल जी, साहिर जी, विजय गुरूरी जी और आंसर महमूद जी और पॉल मसी जी, आपके जवाब सही हैं.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
2: ताहिर जी पहले आपने तुम भिजवाया था और अब आप अभी भी ये भी सही नहीं है, इतना सही नहीं है, लेकिन सॉरी.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: लाइका गोल्ड ऑफिशियली लंदन्स नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।

0: बहुत महफूज थी हस्ती, वो मिसले साहिबासा था। बहुत महफूज थी हस्ती, वो मिसले साहिबासा था। हिसारे इश्क जब टूटा तो आफत को तो आना था। वो अक्सर मुझसे कहता था कयामत तक तुम्हारा हूँ। वो अक्सर मुझसे कहता था कयामत तक तुम्हारा हूँ। गया जब छोड़कर मुझको, कयामत को तो आना था।
1: This is like a gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आपको बता दें कि one British pound आज आपको दिला सकता है 128 Indian rupees, 85.6 अफगानी, 366.2 पाकिस्तानी रुपीस, 163 बांग्लादेशी टाका एंड 1.3 US डॉलर।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £100.15 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: गीता हर्षद जोशी जी लुबना जी लाहौर से, दर्शना जी वेम्बली से, अमिता जी तोची जी, विजया लक्ष्मी जी, अजिंक्या जी, निलेश जी, नंबर एंडिंग विद 438, भाई या बहन जो भी हो प्लीज़ अपना नाम लिखा करें। और यहाँ पर हैं दिया जी कैंट से, बहुत अरसे बाद याद किया जी दिया जी। रशिला जी आपका भी जवाब सही है, अरुणा जी का भी, रीटा जी का भी, और इरफान ग्रीनफर्ड से आपने भी सही जवाब भिजवाया। भारती जी, दिनेश पोपट जी और उल्लास जी आपका जवाब वो जो आपका जवाब है ना वो सही नहीं है।
1: Biggest Indian and Pakistani classics with Anisa Nasir.
0: और सोबत खान जी जवाब सही है, जवाब दुरुस्त हुआ।

0: यार तो मिला, चलो प्यार कर लो, हमें तो प्यार के अलावा कुछ आता भी नहीं, करेंगे क्या जो मोहब्बत में हो गए ना काम, हमें तो और कोई काम भी नहीं आता। बड़े ही प्यार से आपके लिए चुन चुन कर गीत और थीम्स और शायरी और गपशप लेकर आती हूँ। बट साहब सही कहा आपने, जवाब दुरुस्त हुआ में तारिक अजीज साहब बहुत ज़्यादा झलक रहे थे और उन्हीं से तो हम सीखते हैं जो लेजेंड्स रहे हैं इस फील्ड के। माशाल्लाह से खुदावंद करीम उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। लीजिए भाई अब आगे बढ़ेंगे और इस घंटे के आखिरी दो गीत सुनवा रही हूँ। जल्दी से अभी भी अगर ट्राई करना चाहें तो मैसेज फौरन से पहले भिजवा दीजिए।
1: Anisa Nasir, live across Greater London with The Big Show. Catch the evergreen classic Kabhi Kabhi on its 50th anniversary. This Sunday from 2 PM at your nearest Showcase Cinema. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFF UK.

जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली 1971 की फिल्म। गीतों में बिन बिना कॉमन रहा। दिलीप सरोज जी, वीना जी, अली जी अटलांटा से, निम्मी जी और मिस्टर सिंह, आपके जवाब आते भी सही हैं। मिस्टर सिंह, आप सॉरी किस बात के लिए कह रहे हैं? कह रहे हैं सॉरी ड्राइविंग, तो ड्राइव करने के लिए कोई सॉरी थोड़ी ना कहता है। अच्छा अच्छा, आपका मतलब होगा कि देर से जवाब भिजवाया। अरे हमारे बहुत मेहरबान हैं ऐसे जो बिल्कुल एंड पे आके जो है वो जवाब भिजवाते हैं, और इसी चक्कर में कई बार नाम रह जाते हैं। जनाब जहीर खान साहब कराची में सुन रहे हैं बकरियों समेत, और कह रहे हैं कि बकरियां हट्टी कट्टी हैं, नज़र लगाएंगे क्या? माशाल्लाह कहा करें साथ।

0: फ्रॉम मी टू यू, ये प्यारा सा गीत मेरे सभी सुनने वालों के नाम जो बराबर मेरा साथ निभाते हैं थ्रू आउट द शो, नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 127.4 Indian rupees. And don't forget to exchange in branch, online, ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: रशीला जी बेहद शुक्रिया, आ रहा है उल्टा पुल्टा, ध्यान से सुनिए और उन्होंने मुझे बताइए। और रशीला जी के साथ साथ आप भी कोशिश कर सकते हैं। तारिक राहिल जी, ज़्यादा चलाको मासी बनने की आप कोशिश हरगिज़ हरगिज़ ना करें, क्योंकि नाकामी होगी। गीतों में सिर्फ बिन या बिना शामिल था। जिसने ये भी कहा कि तेरे बिन तेरे बिना, तो मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि देखिए हर गीत में तेरे बिना नहीं था, तेरे बिन नहीं था, हर गीत में मतलब बिन था, बिना था, तेरे का कुछ लेना देना था नहीं। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने तेरे तेरा लिखा, मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन आप तो कुछ और ही कहानी सुना रहे थे, इसलिए आपका चांस नहीं लगा। तो अब अंगूर खट्टे वाला हिसाब ना करें, अच्छा आराम से बैठे सुने और ये बूझने की कोशिश करें। कसूर ऐसा ना पुकारा, मझधार छोड़ा, कुसूर ऐसा ना पुकारा, मझधार छोड़ा।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: JP Morgan Personal Investing gives you the clarity to make more informed decisions on your investments, which is great, because right now, something else just became crystal clear. Your kid just outgrew the kids menu. Now he's ordering a truffle gnocchi? You consider making a don't gnocchi it till you try it joke, but now's not the time. Now's the time to grow his world, one bite at a time. Search JP Morgan Personal Investing. Invest with clarity. Capital at risk.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: Catch the evergreen classic Kabhi Kabhi on its 50th anniversary. This Sunday from 2 PM at your nearest Showcase Cinema. Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFFUK.
5: The Leica Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri with International Siddhashram Shakti Centre on Saturday, 10th October at Harrow Leisure Centre, Harrow, HA3, 5BD. Join us for a joyful celebration of music, dance and devotion.
6: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Pevast teer dil se jo khincha to ro diya. Pevast teer dil se jo khincha to ro diya. Ek hum safar ka pyar tha, wapas chubh ho diya. प्यासा पलट गया है तेरे दर से एक शख्स, नाराज पलट गया है तेरे दर से एक शख्स, तूने खुदा को कितनी सहूलत से खो दिया।
0: ये है Like a Gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: Travel to Dubai without a heavy price tag, तो उसके लिए Southall Travel है आपको affordable Dubai offers देने वाले, combines exclusive deals at selected partner hotels with direct flights with Emirates. तो prices सुन लीजिए, 10th December से पहले पहले अगर आप book करते हैं तो just 629 per person for 3 nights. कॉल कीजिए Southall Travel को 0208 843 4444 या विजिट कीजिएगा southalltravel.co.uk.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: चले उल्टे पुल्टे की जानिब चलते हैं। कमल शिवनानी जी सबसे पहले जवाब भिजवा कर राजा बन गए हैं। अजिंक्या जी, रानी जी सलाव से, आप वैसे भी रानी हैं तो आज रानी भी बन गई। निम्मी जी, गीता हर्षद जोशी जी, उल्लास जी टोरंटो से, डॉक्टर राजदीप जी देहरादून से, रशीला जी और फातिमा जी आपके जवाब सही हैं। रशीला जी देखो, मैं जो हमेशा कहती हूँ ना कि हम लोग एक बहुत बड़ी फैमिली हैं जो गोल गोल दुनिया के कोने कोने में फैली है, जहाँ जहाँ तक लाइका नेटवर्क के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, रेट्रो हो, दूसरा स्टेशन हो, तीसरा हो, चौथा हो, वहाँ वहाँ हम एक बहुत ही प्यारे से रिश्ते में जुड़ चुके हैं। और अली जी ऑल द वे फ्रॉम अटलांटा पूछ रहे हैं, हाउ इज़ रशीला जी एंड डॉक्टर सुरेश, इसको कहते हैं मोहब्बत। तो डॉक्टर सुरेश जी तक अली जी का प्यार और दुआएं पहुंचा दीजिएगा। वो कहते हैं मैं दोनों के लिए दुआ करूंगा। हाउ सो वेरी स्वीट।
1: ये है लाइक अ गोल्ड 10:35 AM.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: गलत जवाब वैसे एक भी नहीं आया। किसी ने एक बहुत प्यारी बात लिख भेजी है, वो अभी कुछ ही देर में शेयर करती हूँ।

0: और सच्ची बात तो ये है कि सबके अपने अपने चांद होते हैं। किसी ने एक बहुत खूबसूरत लाइन लिख भेजी है, ये कोई शायद सैड सॉन्ग मैंने सुनवाया था, तो उसके जवाब में तो नहीं कहना चाहिए, उससे रिलेटेड कहते हैं, अनीसा जी जो मुकम्मल मिलते नहीं वो मुकम्मल बिछड़ते भी तो नहीं। कितनी बड़ी सच्चाई है इस बात में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए और ये प्यारा सा सेंटेंस भिजवाने के लिए, बहुत ही इमोशनल सा। जो मुकम्मल मिलते नहीं ना अनीसा जी, वो मुकम्मल बिछड़ते भी तो नहीं, ऐसे गलता तो रोना है। चलो अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आपके मैसेज की जानिब। आप हैं पन्ना जी और रमेश लाखानी जी, कहते हैं ट्यूसडे और थर्सडे हम अपनी ग्रैंड डॉटर को लुक आफ्टर करते हैं, उसका नाम है राही, क्या प्यारा नाम है भाई। और अब वो अपने मम्मी डैडी के पास चली गई और कहते हैं हम फ्री हैं, हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बेहद शुक्रिया। और आपने शायद जवाब भी भिजवाया फर्स्ट आवर में, चलिए आपका जवाब भी सही है, आप भी क्या याद करेंगे। कुछ प्यास है उस हुस्न को भी मेरी नज़र की, कुछ हुस्न का प्यासा है मेरा हुस्न नज़र भी। क्या इश्क है क्या हुस्न है क्या जानिए क्या हो, महशर है इधर भी तो कयामत है उधर भी। और लीजिए आपको नई एपिसोड के बारे में बता दें दोस्तों, जिसे आप डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहेंगे, खास तौर पर अगर आपका इंटरेस्ट फॉस्टरिंग में है तो उसके लिए आप ज़रूर देखिएगा। इस एपिसोड को होस्ट किया है रूबी राजा ने और डायरेक्टली फॉस्टर केयर प्रोफेशनल से गपशप होगी, बातचीत होगी, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको ये भी बता दूँ कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, Amazon, Apple and other major streaming platforms par. Leica Extra is here. This is Anisa Nasir with the big show.
1: Time to go on a cruise. Royal Caribbean, Norwegian, Celebrity, Carnival, MSC, Princess Cruise. Call Travel Hub.
2: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
0: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsaan लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रेवल मंत्रा।
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
7: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
8: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Ruby Raza discusses foster care among South Asians.
9: If I was speaking to foster carers, I would say that you don't need to be perfect. You need to be present. You need to have the empathy to start and do the caring of foster carers are regarded as professionals. If you think you can, you can.
10: Yeah, true.
9: Just try it.
10: There's a will, there's a way.
8: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Feel Good Classics with Anisa Nasir.

0: कॉल गर्ल था, फिल्म का नाम गाने वाली आवाज वन एंड ओनली किशोर कुमार जी की, होश का कितना तनासुब हो बता दे मुझको, होश का कितना तनासुब हो बता दे मुझको, और इस इश्क में दरकार है वहशत कितनी, देखिए हाथ मेरा और बता दस्त शनास, रिस्क कितना है मुकद्दर में और मोहब्बत कितनी।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound can get you 128 Indian rupees, 85.6 Afghan Afghani, 366.3 Pakistani rupees, 163.1 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £100.15 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: पन्ना लाखानी जी का कहना है पिनर से कि अब मेरी आपने ग्रैंड डॉटर का नाम लिया है जो कि बहुत ही प्यारा नाम है ऑब्वियसली राही, तो मेरी बेटी रिया और सन इन लॉ आनंद को भी मेंशन कर दें, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। अरे यहाँ पे तो नाम ना लेने पे इतने झगड़े हो जाते हैं, पूछो मत। तो मैं तो डरते भाई, और भी कोई नाम है तो बता दो, वो भी नाम ले लेती हूँ।
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे लाइक अ गोल्ड पंजाबी तड़का विद अनीसा।

0: This is Anissa Nasir with The Big Show. Like a gold.
1: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: सेलिब्रेट दिवाली एट द आइकॉनिक Royal Albert Hall.
3: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
2: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
3: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
2: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: गेम छो लंदन, तैयार छो? अब बस कुछ दिन बाकी। SKLPC प्रस्तुत करते हैं बैकस्टेज सिबलिंग्स लाइव। भजनों की धुन पर झूमो, गाओ और साथ मिलकर रंग जमाओ। 9 अक्टूबर रात 8 बजे और 10 अक्टूबर शाम 7 बजे SKLPC UK इंडिया गार्डन्स वेस्ट एंड रोड। तो चलो साथे मणि ने गाइए। बुक करें SKLPC.com/BSS। रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
6: Karatino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Karatino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Karatino Better Ghee.
7: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com।
0: Anissa Nasir with The Big Show, weeknights from 7 p.m.

तुम तो बस एक ही दुख पूछते हो, कौन से दुख की करें बात जरा ये तो बता। मौसमों सर्द हवाओं की मसीहाई का दुख, राह की धूल में बिखरी हुई बिनाई का दुख, या किसी भीगती बरसात में तन्हाई का दुख। कौन से दुख की करें बात के दिल का दरिया, इतनी तो ग्यानी की जद में है कि कुछ याद नहीं। कब हमें भूल गया कौन से हरजाई का दुख, तुम तो बस एक ही दुख पूछते हो। फातिमा जी, विजय गुडोरी जी, दिनेश पोपट जी, करसन पिंडोरिया जी, आपके भी जवाब सही थे। कमल शिवनानी जी, अजिंकिया जी, रानी जी, स्लाउ से निमी जी, गीता हर्ष जोशी जी, उल्लास जी, डॉक्टर राजदीप जी और रशीला जी को हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। लीजिए दोस्तों, अब वक्त हुआ जाता है एक प्यारा सा गीत सुनने के बाद आपको न्यूज तक ले जाने का। न्यूज के उस पार कुछ बातें करेंगे नाना पाटेकर जी की। This is Leica.

कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो मैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ, कैसे बताऊं मैं तुम्हें?

ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरसा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की। कैसे बताओ मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ।

कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यू ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम।

0: और हम कैसे बताएं आप हमारे लिए क्या हैं, क्या थे और क्या रहेंगे। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सोशल मीडिया कहीं भी आप खोलो, किसी भी पेज पर जाओ, आपको दिखाई देते हैं सिर्फ और सिर्फ नाना पाटेकर जी। जिंदगी वो है जो मौत पर यकीन करके गुजारी जाए। अपने इंतकाल से कुछ रोज कबल एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर जी ने कहा था, जिंदगी वो है जिसमें मरने पर यकीन हो। आजकल लोगों को मौत याद ही नहीं है, बस हवस है। कमाते जाओ, दौलत इकट्ठी करते जाओ, अय्याशियां करते जाओ। लोगों को ना खुदा याद है ना भगवान, हर किसी को अपनी पड़ी है। मेरे नज़दीक जिंदगी वही है जो दूसरों के काम आकर और मौत पर यकीन करके गुजारी जाए। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहां होंगे। फिर एक दफा फरमाया, हमको मालूम है कल जाना है, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है और यही मेरी आखिरी जायदाद है। मैंने अपनी वो लकड़ी जमा करके रखी है तो रखी है, और वो सूखी है उसी में जलाना। गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना, नहीं तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के बाकी सब लोग जमा होंगे, उनकी आंख में जाएगा, उनकी आंख से पानी आएगा और मरते वक्त गलत फहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे। तो कम से कम मरते वक्त गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। अजिंक्या जी ने कुछ लाइनें भिजवाई हैं, कहते हैं किसी ने मुझे नाना पाटेकर जी को ट्रिब्यूट के तौर पर ये लिख भेजा है, मेरे शरीर को अग्नि के सुपुर्द करने से पहले, या कहना चाहिए कि उनके शरीर को अग्नि के हवाले करने से पहले नफ्स जांच लेना चाहिए। साहेब कलाकार उम्दा है, कहीं किरदार में ना हो। रेस्ट इन पीस वन एंड ओनली नाना पाटेकर जी, सब दुनिया से जाने वाले हैं, एक एक करके हम सब बारी बारी अपना किरदार निभाकर यहाँ से चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों को हमने जाते देखा है और उनके बाद उनको सराहते भी देखा है, लेकिन जितने खूबसूरत अल्फाज आपके लिए कहे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। और ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि ना आपकी सदाकारी को, ना आपकी अदाकारी को, ना आपकी शख्सियत को, ना आपके अंदर छुपे इंसानियत को प्यार करने वाले इंसान को कोई कभी भी भुला पाएगा। मे योर सोल रेस्ट इन पीस। अनीसा नासिर वेरी मच हाजिर टिल 10 o'clock।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you 127.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At JP Morgan Personal Investing, we understand that some things in life are best left undisturbed. Like your 6-month-old who's finally curled up to sleep. But your pension... that could do with a wake-up. Transfer yours and get invested in your future with our expertly managed portfolios and free guidance. Search pensions at JP Morgan Personal Investing. Oops. Investing involves risk. Pension rules apply.
1: Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from...

0: प्यार भी किलोज में लीटर्स में इस तरह मिल रहा होता तो आसानी रहती, फिर बता देते भी कितना प्यार करो कितना ना करो। वैसे तो प्यार का हिसाब मिल ही नहीं सकता। आनंद मिलन जी की तैयार करता है एक धुन और बहुत ही खूबसूरत सी धुन, यकीनन आप सभी ने एंजॉय की होगी।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: तारिक साहब कहते हैं ये गीत भी पुराने हो गए, कब हो गए पता ही नहीं चला। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें खुद अपने पुराने होने का पता नहीं चल रहा है तारिक साहब, यही तो बात है, ध्यान ही नहीं जाता।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लीजिए भी एक और बहुत ही प्यारा सा मैसेज जो पहुंचा हम तक, लेकिन इधर उधर होके पहुंचा है, तो मैं आपको बता दूं जनाब, आपका नाम है नदीम अजहर बाजवा साहब बॉल्टन से, आपने मैसेज भिजवाया है नाना पाटेकर जी के बारे में। आपने कहा कि गुलाम मुस्तफ़ा मैंने देखी थी और कितनी बार देखी, मैं आपको क्या बताऊँ, जस्ट और जस्ट उनकी एक्टिंग को देखने के लिए बार बार देखी। नदीम अजहर बाजवा साहब बॉल्टन से मैसेज भिजवाने का बेहद शुक्रिया। और ये नंबर जो मैं दे रही हूँ इसको नोट कीजिए, इस नंबर पर आप मुझे जब भी चाहें 7 से 10 के दौरान मैसेज भिजवा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। ये मैसेज आपने लायका रेडियो पर भिजवाया और वहाँ से रेडियो वाली ने इसे फॉरवर्ड किया, थैंक यू वेरी मच रेडियो वाली। तो हमारा यहाँ लायका गोल्ड का जो टेक्स्ट मैसेजेस के लिए नंबर है वो है 07423423323। और नाना पाटेकर जी के बारे में तो क्या ही कहें, फ़न को उस बुलंदी तक वो उन्होंने पहुंचा दिया था जहां पर उनकी खामोशी उनके डायलॉग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मतलब पावरफुल हो चुकी थी। वो शायद वाहिद फनकार हैं जिसने अपनी दो सांसों के बीच के वक्फे को भी फ़न से बाहर नहीं रहने दिया। उनका हर किरदार आपके ऊपर एक गहरा असर छोड़ता है। उनके मुकाबले खड़ा बोलता कैरेक्टर भी जो है वो नजर नहीं हटने देता नाना पाटेकर जी से। बोलते किरदार के डायलॉग से ज्यादा नाना की खामोशी ज्यादा पुरकशिश रहती है, आजमा कर देखिएगा।
1: ये है
3: लायका गोल्ड।
2: और लीजिए आप तक एक मैसेज पहुंचा दें, लखविंदर वडाली जी पंजाबी लेजेंड आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए लाइव आपके लिए फ्राइडे 16th अक्टूबर एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाव और संडे 18th अक्टूबर एट ICC बर्मिंघम में।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
3: Anissa Nasir, live across Greater London with The Big Show.
4: Love with Santorini, Venice, Lake Como, Interlaken, Norway and Austria with TravelHubWorld.com.
5: हम से सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
6: बोले, तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 6 नवंबर को प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
6: साधु, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र
6: शीघ्र
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
1: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
10: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. London's biggest classics all day. This is Leica Gold.

0: विजय गुडोरी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, जंपिंग जैक की जो है डेब्यू मूवी थी और आज ये गीत इस खुशी में शामिल हुआ कि करसन पिंडोरिया जी सुनना चाहते थे अपनी फेवरेट हीरोइन यानी कि राजश्री जी के जन्मदिन पर उनकी किसी फिल्म का गीत, तो बहुत खुश हो गए वो और उनके साथ साथ बाकी लोगों को भी गीत अच्छा लगा, तो उसके लिए शुक्रिया।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 आज आपको दिला सकता है, वन ब्रिटिश पाउंड 128 इंडियन रुपीज, 85.7 अफगान अफगानी, 366.4 पाकिस्तानी रुपीज, 163.1 बांग्लादेशी टाका एंड 1.3 US डॉलर।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £100.48 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: और भी आपसे इजाज़त लेने से पहले ज़रा एक दो बातें हो जाएं। सबसे पहले तो अपने नए नवेले लिसनर जनाब नदीम अज़र बाजवा जी बोल्टन से आपको बता दें कि बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं, वो मैनचेस्टर वाले स्टूडियो नंबर पर जो है मैसेज भिजवाते हैं और आप भी वैसा ही करते रहे। आज मैंने आपको नंबर बता दिया, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, जानने वालों को बता दीजिएगा कि अगर मुझसे गपशप लगानी हो, मुझे कोई मैसेज भिजवाना हो, तो उसके लिए ये नंबर रहेगा। बहुत शुक्रिया, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज। और अंसर साहब बेहद शुक्रिया, दीनी जी नवाजिश करम शुक्रिया, मेहरबानी विजय जी, फरजाना जी, भारती जी, अजिंक्या जी और बहुत सारे नाम हैं। अब नाम मेंशन करती रहूंगी तो गीत नहीं सुनवा पाऊंगी, लिहाजा आप रिलैक्स होकर बैठें और इन गीतों का लुत्फ उठाएं, बशर्ते ज़िंदगी में कल आपसे मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शब खैर, शुभरात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. L-Y-C-A. This is Leica.
3: From Lollywood, with love, with Anissa.

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना
2: Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.

दीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन नदीम तन न